0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: प्रॉमिस?

सन खानदान यू लाइक कैप्टन कर्क हम स्पॉट के कर यू वाच सीएनएन हम सुनते एआईआर यू गॉट एमटीवी अपना है जीटीवी यार।

तीनों हम पियेंगे लस्सी। है ये सब कुछ अलग लेकिन एक जैसा, डॉलर हो या येन पैसा तो है पैसा, रोटी हो या कपड़ा या मौज मस्ती, लंदन या टोक्यो चीजदारी है सस्ती। आदमी तो है आदमी, गोरा हो या काला, चाहे करे डोरेमी या सारे गामा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

तमाम ही कलाम बड़े खूबसूरत होते हैं और आज की ये महफिल, और ये महफिल हर रोज होती है हमारी और हमारा और आपका साथ दो घंटे होता है, दो घंटे में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम आपके लिए पेश करते हैं। और अभी भी पहला कलाम अभी आपने सुना और आपको एक और कलाम खूबसूरत सुनाते हैं।

वेलकम बैक समय क्राम प्रोग्राम में ब्रेक थी और ब्रेक बड़ी ज़रूरी है क्योंकि रेडियो स्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक को प्ले करना। कमर्शियल्स ब्रेक होती हैं जो रेडियो की किस्म की जान है क्योंकि रेडियो चलता है उनके ज़रिए है। तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ। ये कलाम जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा तो इंशाल्लाह इस कलाम के बाद आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करूँगा कि इसके बाद एक और कलाम आपको साथ ही सुनाया जाए।

पर शराब देते हुए ये मुस्कुराती हुई चीज मुस्कुरा के मिला, सरूर चीज की मकदार पर नहीं मौकूफ। शराब कम है, शराब कम है, शराब कम है, पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता, शराब

सरी ही रंग नहीं, मियां शराब का कोई अपना सरी ही रंग नहीं, शराब तज्जिया एहतसाब करती है, शराब का कोई अपना सरी ही रंग नहीं, शराब तज्जिया एहतसाब करती है, जो अहले दिल है।

ओदे जेठ ना कोई अमीर होवे, ओदे दर्दे गदावां दी की दसा, करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे, ओ नहीं मंगदा तख्त।

0: Listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: Link FM Sheffield।
2: Link FM।

0: Badr Rahman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahan.
3: My name is Rizwan Ishfaq.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
11: And the winner is...
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station,
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
0: My name is Abdul Rahman.
1: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
3: My name is Rizwan Ishfaq.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
17: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफ एम 96.7 FM.

0: You're listening to Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Link FM, your number one community radio station.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ लिंक FM शेफील्ड।

0: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
2: मैं औरंगजेब चौधरी।
3: मैं असलम भुट्टा।
4: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
5: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
6: मेरा नाम अमदस्कर है।
7: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
8: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
9: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
10: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।
1: News, health, sports, educational programs and much more, only on Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
1: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
0: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी करामल से 07754132576 that's 07754132576 आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
2: Sheffield's Link FM.

0: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
1: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
0: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576 that's 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: अगर विकेट डिफेंड है तो दो चार शॉट लगा दो
1: जी जी
0: जा चलो अगर आप टेस्ट नहीं खेली जाती वनडे खेल ले कुछ कुछ और फॉर्मेट कुछ कुछ ना कुछ करें यार आपको पता कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये नहीं चल रहा
1: जी जी अब मैं मतलब क्रिटिसाइज क्या करूं श्याम अयूब को जिसकी ये T20 में भी बार दफा कहते हैं जगह नहीं बनती है वो T20 का खिलाड़ी है उसको जनाब आपने बिल्कुल शेर के मुंह में दे दिया कि आ जा भाई उसने जी जी जी जी
0: खराब करने वाली बात है और वही खिलाड़ी जो एक मैच चलता है तो उसको 10-15 महीने ये चेक करते रहते हैं और जैसे एक मैच गड़बड़ होती है तो कहते हैं बस घर जाए आप तो सोच भाई ये टोटल मिसमैनेजमेंट सिचुएशन है यहाँ पे और मेरे अंदाजे में सोच भाई जो है ना ये इंसल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट की कि ऐसे लोग बैठे हुए जिनको खुद नहीं पता हमने क्या करना है
1: ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है तो अभी मैं वो देख रहा था कि भाई जो हमारे फॉर्मर कोच हैं वो यूसुफ साहब वो मोहम्मद यूसुफ वो कह रहे हैं जी कि बैट्समैन को ओपन स्टांस नहीं खड़े होना चाहिए उसको साइड वेज खड़ा होना चाहिए और उसको बॉल को बड़ा देख के अंडर द हेड खेलना चाहिए तो जब आप इनकी खुद कोचिंग करते रहे हैं तो अब आप इनको जब वो खेल नहीं सक रहे तो आप ऊपर से जी जी
0: देखिए बाहर से क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान है लेकिन जो क्रिकेट होते हैं जो स्किल लेवल है ये आप यहाँ पे इंटरनेशनल पे नहीं सीखते ये आप पहले सीख के आते हैं तभी आपकी जगह बनती है इंटरनेशनल टीम में
1: ऐसा ही है बिल्कुल
0: टैलेंट या स्किल आपके पास होना चाहिए बाकी चीजें सब होती है टेम्परामेंट की होती है इंटेंट की होती है माइंड सेट की होती है और ये बंदा जो ना आहिस्ता आहिस्ता होता है चलो कोचिंग होती है आपके साथ मेंटर आते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं
1: जी जी
0: अगर आप दो मैचेस के बाद घर जा रहे हैं तो वो तो टाइम आएगा इन्होंने कि आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं
1: ऐसी बात है जी बिल्कुल ऐसी ही है तो लेट्स होप जी कि कोई अच्छी खबर आए कि कहीं से कि जी फलाने को हटा दिया गया प्लेयरों को तो आप जनाब शफल करते रहेंगे किसी को निकालेंगे किसी को डालेंगे लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं उन
0: जी
1: जी जी
0: सबसे बड़ी खूबी ये थी मोहम्मद यूसुफ ने हर बाउंसर को मतलब चुप कर दिया
1: जी जी
0: तो इस वजह से जो है ना सोच भाई अभी आप देखा ना बाबर आजम को जो उसने वो जफरा आचू को पुल किया था लास्ट मैच में
1: उसको छोड़ना चाहिए था
0: यार ये टेस्ट मैच है यार ये T20 में तो आप मारते नहीं शॉट
1: जी जी हाँ बिल्कुल
0: और टेस्ट मैच में आप ऐसी बॉल को पुल कर रहे हैं ये कैसी माइंड सेट है आपकी यार मतलब ये इंटेंट भी नहीं है ये तो टोटल मतलब मेंटली खराब हुई है हमारे लड़कों को भी समझ नहीं आ रही
1: आपके जो क्रिकेट शुरू होनी है अभी इंडोर क्रिकेट वो हो गई है या अभी शुरू होने वाली है अभी आप ब्रेक के बाद करना फिर क्योंकि अभी 2-3 मिनट ही रह गए ब्रेक में तो इंशाल्लाह फिर आपसे ना बात होगी तो बहुत शुक्रिया जनाब ज़हीराबाद साहब आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा तो ओके बड़ी मेहरबानी जनाब ये थे हमारे लेजेंड हैं यहाँ के क्रिकेट के ज़हीराबाद साहब और मेरे यहाँ पे होस्ट साथ होस्ट भी होते हैं आज थोड़े बिजी हैं तो आ नहीं सके तो बड़ी मेहरबानी उनकी उन्होंने कॉल की हमें और जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट का जो मैं कहता हूँ कि हर कोई रोना रो रहा है इस वक्त तो उसके ऊपर बात हो रही है तो बात वाकई यही है कि अगर आप 3 साल की कारकर्दगी देखें तो बड़ी मायूस कुन है और इसमें ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या वजह है कि यहाँ से काम शुरू होना चाहिए कि जब खिलाड़ियों को तो आप लाते रहेंगे उनको निकालते रहेंगे नए खिलाड़ी भर्ती करते रहेंगे उन्होंने तो जो उनको कोच किया जाएगा जैसे ही उनको क्रिकेट सिखाई जाएगी वो कारकर्दगी करेंगे लेकिन वंस यू थिंक कि जिन्हें ये फार्मूला आपका चल नहीं रहा तो देर इज़ प्रॉब्लम समवेयर एंड ऐसे जैसे कि ज़हीराबाद साहब कह रहे थे कि ये ऊपर का प्रॉब्लम है जिसको अगर आप बंदे को यही होता है कि मैं अगर 3 साल से बैठा हूँ और मेरे अपने नीचे मेरे कोई सिलसिला नहीं चल रहा काम नहीं मेरे से हो रहा मेरे मैं वो रिजल्ट अचीव नहीं कर रहा तो द बेस्ट थिंग इज़ टू स्टेप असाइड

तो लेट्स होप कि इस बुरी टूर के बाद मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट एट द लोवेस्ट एब है और उसमें जनाब बड़ा अफसोस भी होता है, दिल दुखता है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी मतलब इसकी फॉलोइंग है पाकिस्तान के ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं तो लोग देख रहे होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यकीन करें कि हमारे कुछ दोस्त, मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछता हूँ यार क्रिकेट की कोई ख़बर सुनाओ, कहते हैं वो बस ऐसी बात करते हैं कि दिल भी दुखता है, कहते हैं छोड़ो पर यार क्रिकेट के अलावा कोई और बात करें तो वो करें। तो उम्मीद तो यही है कि इस टूर के बाद जनाब फिर से बैठे सर जोड़ के बैठें और देखें कि गलतियां कहां पे हैं। जैसे कि अभी वो ज़हीर बता रहे थे कि जी 3 साल में हर तीसरे महीने अगर एक कोच आप तब्दील कर देंगे तो वो उसने कोचिंग क्या करनी है, जब उसको अपना ही नहीं पता कि मैंने रहना कि नहीं रहना तो वो कोचिंग क्या करेगा। बाहर के कोचेज भी आपने मंगाए, अपने कोचेज भी आपने जो अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने रखा है, और फिर कोचेज को जब और फिर सेलेक्टर्स की बात आए तो उनको आप जनाब एक्सप्लेनेशन लेटर्स दे देते हैं कि जनाब आप बताएं आपने इस बंदे को क्यों सेलेक्ट किया, इसको क्यों सेलेक्ट किया, इसको क्यों सेलेक्ट किया। तो ऑब्वियसली मैं तो समझता हूँ कि मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए, द गुड प्लेयर्स दे शुड गेट द चांस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि ये हमारे वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं फेवरेटिज्म आ जाती है और फिर अपने अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ियों को ले आते हैं और फिर उसके बाद यही असर होता है जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम का हो रहा है। तो दुआई की जा सकती है, तो इंशाल्लाह गोइंग फॉर अ ब्रेक, तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़।

0: This is Ahmad Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abed Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
12: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
11: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield. S47WZ. Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
13: सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7
14: दिल से दिल को मिलाता हर रंग हर आवाज को सजाता आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ
15: लिंक एफएम शेफील्ड

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: Community radio for Sheffield.
2: This is Link FM.
3: Escape पेश करते हैं live in concert, singing sensation, voice of Punjab, Gulab. और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15 सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ बाय योर टिकट्स एट इवेंट ब्राइट या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576 दैट्स 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 सितंबर 6:30 PM अरूज बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
1: This is Link FM.

0: make a difference in your community. Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारी, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 01142 966092। पार्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: Listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: SK पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
8: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
7: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ बाय योर टिकट्स एट इवेंट ब्राइट या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576 दैट्स 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 सितंबर 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम

0: is Link FM.
1: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15 सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी करामल से 07-54-132-576 that's 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 सितंबर 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
3: कम्युनिटी की आवाज ये है लिंक FM 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Link FM, Sheffield.
16: Link FM.
17: SK पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
18: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
17: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield. S47WZ. Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
19: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7. बहुत मजा है सीने.

0: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
1: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया, माया परदेस दिया,
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. या फिर चौधरी करामत से 07754132576. That's 07754132576. आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ. गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम.

0: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ बाय योर टिकट्स एट इवेंट ब्राइट या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576 दैट्स 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
10: लिंक एफएम शेफील्ड
11: वसे तेरी मियां वाली
12: बोले बोले बोले बोले बोले
11: वसे तेरी मियां वाली

0: निकले
1: और हर सूर
0: दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।
4: From the heart of the city, this is Link FM.
5: SK पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब। और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ। बाय योर टिकट्स एट इवेंट ब्राइट या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576। दैट्स 07-54-132-576। आना मत भूलिएगा 15 सितंबर 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ। गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम।
6: Today, tomorrow, every day. Sheffield's Link FM.

0: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
1: माया परदेश दिया ओ माया परदेश दिया
0: और फराह खान हमरा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15 सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576 that's 07754132576 aana mat bhuliyega 15 september 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield S47WZ Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke sath ek haseen shaam

0: is Link FM.
1: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेश दिया ओ माया परदेश दिया
1: और फराह खान हमरा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15 सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September 6:30 PM. Arud Banqueting Suite, Sheffield. S47WZ. Gulab, Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
3: Your number one for news in Sheffield, Link FM.
4: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले मिले

0: bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center, Link FM. Link FM.
1: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15 सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07-54-132-576. That's 07-54-132-576. Aana mat bhuliyega. 15 September, 6:30 PM, Arud Banqueting Suite, Sheffield. S47WZ. Gulab, Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.
0: Link FM, your number one community radio station.

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

0: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
1: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया, माया परदेस दिया,
1: और फराह खान हमरा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. Ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576. That's 07754132576. Aana mat bhuliyega. 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield. S47WZ. Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam.

0: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
1: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
0: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576 that's 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
2: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM.
3: Sheffield.
4: Music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
5: This is Link FM.

0: is Link FM.
1: Your very own community radio station.
2: Link FM.
3: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
4: माया परदेस दिया
3: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th September 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ. Buy your tickets at Eventbrite. या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576. That's 07-54-132-576. आना मत भूलिएगा 15 September 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ. गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम.

0: You are listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
4: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Sheffield's very own community radio station,
8: Link FM.
9: My name is Shireen.
10: My name is Abdul Rahman.
11: My name is Sai Mudassir.
12: This is Rahan.
13: My name is Rizwan Ishwak.
14: My name is Asham.
15: My name is Azan Mudassir.
16: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
8: Link FM.
7: This is Link FM.
17: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM.
18: सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
19: लिंक FM Sheffield.

0: एस्केप पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
1: माया परदेश दिया ओ माया परदेश दिया
0: और फराह खान हमरा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite ya phir Chaudhary Kramal se 07754132576 that's 07754132576 aana mat bhuliyega 15 September 6:30 PM Arud Banqueting Suite Sheffield S47WZ Gulab Farah Khan aur folk singer Munir Ahmed Chaudhary ke saath ek haseen shaam

0: This is Link FM.
1: एसके पेश करते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट सिंगिंग सेंसेशन वॉइस ऑफ पंजाब गुलाब
2: माया परदेस दिया ओ माया परदेस दिया
1: और फराह खान हमारा फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी ऑन ट्यूसडे 15th सितंबर 6:30 PM एट अरूद बैंक्वेटिंग सुइट्स शेफील्ड S47WZ buy your tickets at Eventbrite या फिर चौधरी करामत से 07-54-132-576 that's 07-54-132-576 आना मत भूलिएगा 15 सितंबर 6:30 PM अरूद बैंक्वेटिंग सुइट शेफील्ड S47WZ गुलाब फराह खान और फोक सिंगर मुनीर अहमद चौधरी के साथ एक हसीन शाम
3: अस्सलाम वालेकुम जी आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

लिंक एफएम के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से लिंक एफएम का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

0: Legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
1: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोधरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: Khush Ikhlaq Amla Lajwab Service AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की एमओटी नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की एमओटी एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की एमओटी का काबिले एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585।
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: Link FM के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से Link FM का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

लिंक एफएम के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से लिंक एफएम का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: It's time for your favorite program, Geet Se Ghazal Tak. Only on Link FM 96.7 FM.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
0: और हर सूर
1: दिल को छो जाए,
0: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

दो घंटे की मौसीकी, दो घंटे यादों के, दो घंटे गीत और गजल, सिर्फ लिंक एफएम पर।

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

मोहब्बत हो गई है फिर से शायद, मैं फिर से चांद को पाने चला हूँ। बहुत रोया था जो एक बार करके, वही गलती मैं दोहराने चला हूँ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: भी तो बताइए कौन है किसका आशिक।
1: फिलहाल तो ये एक राज है हुजूर।
0: मोहब्बत में ये कैसी पर्दादारी है सरकार।
1: पर्दा भी हटेगा, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
0: अच्छा चलिए तो सुनाइए आशिक के दिल का हाल।
1: क्यों नहीं, बेशक, लेकिन यहाँ सिर्फ एक झलक, क्योंकि एस सीरीज कैसेट्स पर सजे आशिक को घर भी तो लाना है, अपना भी तो बनाना है। क्यों?

0: दिलों को चुराते,
1: दिलों में समाते,
0: ये है अनवर सागर के गाने,
1: आदेश श्रीवास्तव के तराने,
0: आए हैं सिर्फ आपको सुनाने,
1: कुमार सानू, शब्बीर कुमार, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति और बाबुल सुप्रियो,
0: आशिक
1: आशिक।

0: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
2: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.

0: वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा?
1: सीमा।
2: भाई ये अपनी वीरू की बहन है।
0: बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है।
3: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.